लो यारो, कस्टम बस्टम कल्चर बल्चर सबको गोली मारो, दिल वालों के इस मेले में मौज मना लो यारो, कस्टम बस्टम कल्चर बल्चर सबको गोली मारो, मुक्त मिले जब दिल की बुटिया फिर सदमे को झेलो, मजा ले लो। घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा गेलो ओ गेलो ओ गेलो ओ घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा गेलो ओ गेलो

मेला, उसके बाद झमेला। बाबूजी बेचारे कुली, बीवी बच्चे ठेला। अरे ठेला, अरे ठेला, अरे ठेला। शादी एक बरस का मेला, उसके बाद झमेला। बाबूजी बेचारे कुली, बीवी बच्चे ठेला। अरे शादी शादी।

उजाला रेडियो डे अबे प्लस पे देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

है पर गड़बड़ घोटाले का हर काम है। ये बॉम्बे शहर का बड़ा नाम है पर गड़बड़ घोटाले

बोले बटाटा यहाँ, नमस्ते को कहते हैं टाटा यहाँ। अमरूद पेरू और अंडा है पैदा, यहाँ पर हुए हैं नए नाम पैदा। ये जिसको बुलाएं करें

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बे प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैक द बेस्ट उजाला रेडियो।

माँ शेरावाली ने हम सभी को सबसे कीमती ये मानव जन्म और मनुष्य का शरीर दिया है, फिर भी हमारी आंखों के आगे अज्ञान का जो पर्दा है उस कारण हम असली धन को देख नहीं पाते। एक नौजवान गरीबी से तंग आकर अपने भाग्य को कोसने लगा। गरीबी दूर हो इस उपाय की खोज में वो एक संत से मिला। महात्मा ने उसकी पूरी बात सुनी और बोले, बेटे मैं एक व्यापारी को पहचानता हूं, वो मनुष्य के अंग खरीद कर अच्छे पैसे देता है। तुम अपनी दोनों आंखें बेच दो उसे, वो 50,000 रुपए देगा। युवक बोला, हाँ आप कैसी बात करते हैं महाराज, 50,000 रुपए लेकर मैं क्या करूंगा, बिन आंखों के अंधा नहीं हो जाऊंगा। तब संत ने कहा, तो ठीक है दोनों हाथ बेच दो, 30,000 रुपए मिल जाएंगे। युवक बोला, अरे दो हाथ बेचकर 30,000 रुपए मिल भी गए तो किस काम आएंगे, मुझे अपाहज नहीं बनना। अच्छा तो ऐसा करो अपनी दोनों टांगे उसे बेच दो, 20,000 रुपए मिल जाएंगे। चलो दो ना सही, एक टांग ही बेच दो, 10,000 रुपए क्या बुरे हैं। नौजवान बोला, वाह महाराज वाह, क्या रास्ता बताया है धन कमाने का, मैं लंगड़ा नहीं हो जाऊंगा। संत बोले, फिर ठीक है पूरा शरीर 1,00,000 में बेच दो। नौजवान बोला, 1,00,000 तो क्या, अगर कोई 1,00,000,000 भी देगा तो भी मैं अपना शरीर नहीं बेचूंगा। संत बोले, बेटे मैं यही समझाना चाहता हूं तुम्हें, भगवान ने जब करोड़ों नहीं अरबों खरबों की कीमत का यह शरीर दिया है तो भला तुम गरीब क्यों मानते हो अपने आप को। नौजवान संत के चरणों में गिरकर बोला, महात्मन आपने मेरी आंखें खोल दी, आज्ञा दीजिए मुझे क्या करना चाहिए। संत बोले, वत्स, मानव शरीर एक अपार खजाना है, अपने हर अंग से काम लो। इस शरीर के रोम रोम में शक्ति रूपिणी जगदम्बे का आह्वान कर मां शेरावाली तेरे मन मंदिर में आन बसेगी। तब सोना चांदी हीरे जवाहरात तो क्या, जो तू चाहेगा वही पाएगा। जा मां की भक्ति में लीन हो जा, कण कण में मां के दर्शन कर।

0: live vanuit de hoofdstad. Jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं. 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो. स्टूर यू मेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl.

पूरा तोड़ दिन के देवे है तोड़ साथ, के तोड़ साथ सोते है, के तोड़ साथ जागे है, के कर साथ तू ओतो में घूमे है, और के कर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू

उजाला रेडियो के जरिए हम प्रोग्राम में आपको ये नहमा सुनाने को जा रहे हैं मुक्का सिंह के आवाज में. मुक्का सिंह ओक अवेश अब उजाला Brasa Mela Fest 29 en 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Mee. Noteer het in je agenda. Brasa Mela Fest. Brasa Fest zondag. Nee, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. To Bemisa. Mukasing met Express zal.

ने बनाए हैं कॉफी चाय मिदक शो में मेडवेकिंग फ्रॉम Brazafest.nl 29 en 30 augustus. Nabulie. और बता दिए अपना परिवार दोस्तों जान पहचान से बता दीजिए Brazafest op 29 en 30 augustus in G.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। Business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Ujala Radio, deze bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, deze bhar mein. Har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio. DAB Plus के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए। उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Hey you!

और मेरा दिल अब तेरा हो साजना, लता जी की आवाज फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई, मेरा दिल अब तेरा हो साजना, उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें। फिल्म स्वयंवर का गीत और आप सुने मोहम्मद रफी एंड लता मंगेशकर से। अगला गीत लता जी से आप सुनेंगे।

मुंडन संस्कार होने वाले हैं उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होनी तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटरकार में या जहां पर भी आप हैं।

उजाला रेडियो पूरा देश में दिया बे प्लस पर हमेशा और हर एक जगह सुनिए यू आर द नंबर वन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन।

उजाला रेडियो एक ही स्टेशन पूरा देश में तमाम हॉलैंड में उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो के जरिए हम प्रोग्राम में आपको ये नामा सुनाने को जा रहे हैं मुक्का सिंह की आवाज में. मुक्का सिंह ओक अवेशक ऑफ उजाला Brasa Mela Fest 29 en 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Noteer het in je agenda. Brasa Mela Fest. Brasa Fest zondag. Nee, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. To be Misa. Mukasing met Express zal

0: या तू बेमिसाल बाटे।
1: हाँ हमारा दतवा देख तो हमारा दतवा देख तो कितना
0: हम माँ थी बोला कि तू कावले तू हंसे तो तू दतवा ऐसा बड़ा विशाल दिखता है चमकेगा ना शेर
1: एकदम जैसे सोना
0: सोना सोना सोना
1: देखा तो ऊपर वही है यं सोना के दांत
0: ना ना हमने नहीं
1: मां ना ना मोइले के तो क्या
0: ना हमें कुबू ना मोइले चीज़ वाय अहले मां सोना के दांत कहे के वो ऐसा तो उनसाने सुरीनाम हम देखी ला खानी सुरीनामर्स के और सुरीनामर्स इन तो आँख में
1: नहीं नहीं नहीं दी पॉप स्टार है बता तो क्या
0: इस तो
1: मैडोना
0: के भी क्या मैडोना के
1: एगो एगो दांतवा चाहिए तो सोना के दांत
0: हम ना हम
1: और हमने ओमे को डायमंड लगा दिया अगवा खुद में दख थ्रोन्स लो
0: खुई में ना खुई में मैं हम मैडोना के मैडोना जो दांत चुदारे कैसे बोलिए चुदारे ना उसे क्या
1: दिखावेगा दिखावेगा
0: दैट क्लिंग द बेच वेल
1: प्रातनीत ऑर्डिनर ना प्रात को नॉर्मल दैट
0: क्लिंग वेल ऑर्डिनर है दैट क्लिंग ऑर्डिनर तो जैसे
1: बोइटी के आदमी का बात आएगा बोइटी
0: हां दिखा जब मैडोना दिखा रहेगा अपन दांत हम कभी नहीं तक लियो के
1: तुम मात्रे बोले ची दोरे
0: या
1: वो तुम मात्रे बोले तो हिंदुस्तानी भी ना मोई है बॉय लॉयड अपन दांत ची दोरल जाएगा देख ले तो जैसे को बंदर देखो बंदर भी अपन दातुन दातुन दिखावेगा तो ओके ची दोरे कई ना कॉप फन बंदर
0: हां
1: eerste wat je opvalt ook het dat
0: waar dat wat pehle dikhate ha aise
1: ke dat wat badka hai to
0: ha ja
1: badka ka betiyar
0: ja
1: ei hamar coffee

हमने बनाए हैं कॉफी चाय मिदक शो मेड मेडवेकिंग फ्रॉम brasafest.nl 29 en 30 augustus naar Boulie और बता दिए अपना परिवार दोस्तों जान पहचान से बता दीजिए brasafest op 29 en 30 augustus in GIA Event Center. Shivam Rajaram ke vaas mein suniye kaise tu

ठीक पौने छह का वक्त है मेरे प्यारे सिनेमा वालों, उजाला रेडियो है ये और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। आज बुधवार है मेरे प्यारे सिनेमा वालों, 15 तारीख जुलाई साल 2026। आपका सेवा फिर एक बार हम करने चले आए हैं लाइफ एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनाम से। अब से 9 बजे पेश करेंगे वही प्रोग्राम जिसके साथ कुछ संगीत ऐसे हैं और उन संगीतों के साथ कुछ यादें जो जोड़े हुए हैं, उन यादों को हम फिर एक बार मिलकर ताजा करेंगे। प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर लेकर आपका सेवा हम करेंगे रात्रि में 9 बजे तक मेरे प्यारे सुनने वालों। तो तहे दिल से स्वागत है

पता नहीं आप कहां कहां सुन रहे होंगे इस वक्त, कहां तक उजाला रेडियो की ये धुन जो है, मेरी आवाज जो है, कहां कहां आपको सुनाई दे रहे होंगे। तो तहदिल से स्वागत है आप सभी को, आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। आज प्रोग्राम मेरे प्यारे सुनो, तीसरी बार हम बनाएंगे अनवर सरदार अनु मलिक जी का, द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर, और ये गाते भी हैं। तो इनके कुछ हिट सॉन्ग्स फिर एक बार प्लेलिस्ट में सजा रखा है, और प्लेलिस्ट से एक एक निकाल कर आप तक हम पेश करेंगे। बस यही उम्मीद और आशा के साथ कि आप सभी भी सुनते वक्त भी भरपूर एंजॉय करेंगे। मेरे प्यारे सुनो, हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते आपकी फरमाइश, जरूरी खबरें, मौत की खबरें, जो भी जानकारी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करना चाहोगे, तो सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे आप अवश्य उजाला रेडियो को तार कर सकते हो। दफ्तर का तार है 020-409-0807, 020-409-0807। और आपके हर एक कामकाज के लिए जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते 24 घंटे 7 दिन लगातार भी आप मेल कर सकते हैं। आप मेल करें info@ujala.nl। हाँ, और हमारे ये प्रोग्राम के दौरान और जब भी मैं प्रोग्राम बनाता हूँ मेरे प्यारे सुनो वालों, डार्मा खीन ट्वेफल ओवर बस्तान, जब भी मैं हूँ आप स्टूडियो में सीधे मुझसे भी बातें कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। आप व्हाट्सएप करें 020-363-0000। तो मेरे प्यारे सुनो वालों, बहुत सारे खूबसूरत गाने हैं, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना आज का ओपनिंग सिलेक्शन आप तक पेश करें। अनु मलिक जी का एक मास्टरपीस, एक की जो काफी पॉपुलर हुआ और अभी तक जब भी चलते हैं लोग पसंद करते हैं, इसे गुनगुनाते हैं। कतिल शफाई जी का लिखा हुआ एक नगमा है जो मिलकर गीत गाएंगे, द टाइगर कुमार सानू और अलका याग्निक, 1993 का फिल्म सर से हम नगमा निकाल रहे हैं, फिल्म सर 1993। मेरे प्यारे सुनो लो, आप एंजॉय करें भरपूर, व्हाट अ लवली नाइट, सूरज अपना चेहरा अभी तक दिखा रहे हैं, खूबसूरत दिन बीता है और खूबसूरत रात गुजरेगी अगर मिल बैठेंगे दीवाने हम और

ये उजली चांदनी जब हसरतों को गुड़गुड़ाएगी। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों और अपने खूबसूरत आवाजों में मिलकर गीत गाए हैं द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू और अलका याग्निक। कटिल शफाई के कलम से लिखा हुआ ये नगमा दोनों ने मिलकर गाए हैं। अन्नू मल्लिक जिसका हम प्रोग्राम सजा रहे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, अन्नू मल्लिक जो नेशनल अवार्ड भी जीते हैं और 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड इन्होंने जीता है। इनकी साज और संगीत पर मिलकर गीत गाया गया है। फिल्म का नाम सर मेरे प्यारे सुनने वालों और सर जो है 1993 का है। नेहत इंद्रिय नेहत महेश भज्जी का डायरेक्ट किया हुआ एक मूवी है जिसमें नाजीरुद्दीन शाह, पूजा भट्ट, अतुल अग्निहोत्री, परेश रावल, गुलशन ग्रोवर इन सभी ने जो काम किए हैं। मेरे प्यारे सुनोर धीरे धीरे हो रहे हैं 3 मिनट 4 o'clock फन हाल ऑफ सेफ। सरे 6 बजने में ऑलमोस्ट 3 मिनट बाकी है। फिर एक बार स्वागत करता हूं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनाम से। मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे और तहदिल से आप सभी को फिर एक बार हम स्वागत करते हैं। आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। अनु मलिक जी का 3रा प्रोग्राम हम सजा रहे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। थोड़ा सा हमेशा की तरह आपको झुलाएंगे, मिलेनियम के बाद ले चलेंगे, उसके बाद हम 90s में फिर वापस, तो मिलेनियम तो फिर 90s, तो जाने तो जैसे झुलवा झूले है उसी तरह हम आपको झुलाएंगे। हमेशा की तरह हमारी ये प्रोग्राम जब भी मैं सजाता हूँ तो पुराने होते हैं तो एक नए होते हैं तो फिर पुराने। ये है नगमाओं का सीढ़ी मेरे प्यारे सुनने वालों, कभी हम चढ़ते हैं और कभी हम उठते हैं, तू जाने दो। समीर का लिखा हुआ गीत अब की बार एक काफी पॉपुलर सॉन्ग उन दिनों और आज भी अगर चल रहे हैं तो लोग पसंद भी करते हैं। 20 साल हो गए हैं ये गीत रिलीज जो हुए हैं और अभी तक ये गीत बहुत खूबसूरत लगता है सुनने में। समीर का लिखा हुआ ये गीत कुणाल गांजावाला गाएंगे, ऑफ कोर्स अनु मल्लिक की साज और संगीत पर। प्यारे मोहन की बात हम कर रहे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, फिल्म का नाम प्यारे मोहन जो 2006 का एक मूवी है। आई लव यू माई एंजल।

जहां भी जाएगा तेरे पीछे पीछे मैं आऊंगा, क्योंकि आई लव यू माई एंजल, तुझे कभी ना मैं भुलाऊंगा। समीर का लिखा हुआ गीत, कुणाल गांजावाला की खूबसूरत आवाज में गीत आप सभी ने सुने। अन्नू मलिक की साज और संगीत पर इन्होंने ये गीत गाए हैं। कुणाल जी, प्यारे मोहन फिल्म का नाम, मेरे प्यारे सुनो वालों, 2006 का ये फिल्म, इंद्र कुमार जी जो अब हमारे बीच नहीं रहा, इनका डायरेक्ट किया हुआ मूवी, जिसमें फरदीन खान और जिन पर ये गीत पिक्चराइज किया गया है, जहां तक मेरा ख्याल है विवेक ओबेरॉय और ऐशा देओल, बोमन ईरानी भी मूवी में है, अमृता राव, संजय मिश्रा जी। दिस इज यू आर, मेरे प्यारे सुनने वालों, लाइफ एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रोटरडम से। मेरे प्यारे सुनने वालों, आप सुन रहे होंगे उजाला रेडियो पर, और कॉफी ऑफ और चाय में भी इसका जिक्र भी हो रहे हैं कि शनिवार और एतवार, यहां शनिवार और एतवार वो भी 29 और 30 तारीख अगस्त को ब्रासा फेस है दनहाग शहर में, नए भरे साल जिसका नाम है जिया इवेंट्स इन द ब्यूर्ट फन सिख्तमबुर्ग दार, तो इंडोर फेस्टिवल समर एडिशन जो रचाया गया है 29 अगस्त और सोंडाग 30 अगस्त, जहां आप खनित कर सकते हैं प्राकृतिक म्यूजिक, आप नाच सकते हैं, खा सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। आप आइए अपने दोस्तों हिति प्रेमियों के साथ, और वक्त पर आप अपना टिकटी जो है आप खरीद ले लेना। चेक फॉर मेर इन्फो और ब्रासा फेस्ट .nl। एंड नेचुरलक आज मैंने सुना है कि अर्ली बर्ड जो टिकट्स हैं बैना 80% बिकाएगी, दैट्स इन द खुदकोप कार्ट, सो द्राल नीत वाख नीत तलंग। उजाला रेडियो का जो इवेंट होते हैं और इस तरह का, तो बहुत खूबसूरत होंगे। एंड वी इज नी बाय मैं ik kan ze allemaal niet noemen, maar als jij zegt van die wil ik horen, dan weet ik die zit erbij. Echt 100%. Toen bolje Umar hè. Toen bolje kanaam hè. Ja, wie kan je noemen? Noem een artiest, die is erbij. Toen dan het toch? Sujal hoor ik is erbij. Devinder Singh is erbij. Iedereen is erbij. Dus check de website en wacht per na tikte. Gerit Lelena. Hamari social per bhi iska zikr hamne kiye hai. Rozana chhapte hai kuch na kuch Brasa Fest ke baare mein, to www.brasafest.nl per aapko bahut sari information milega, aur kahan per bhi aap tikte gerit sakte hai. Set het klem apna agenda mein 29 और 30 अगस्त को, जो एक शनिवार है और नेचुरलक सोंडाग है रविवार, वो दोनों दिन हंगामा होने वाला है जिया डिफेंस सेंटर दनहाग में। मेरे प्यारे सुनो, ले चलते हैं अगले गीत की ओर, क्योंकि प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर में अन्नू मलिक जी का जो तीसरा भाग हम बना रहे हैं, अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे। गीत जो इकबाल शाहीन जी ने लिखा और जो मिलकर गाएंगे कुमार सान और अलका याग्निक, ब्यूटीफुल सॉन्ग, इनके जो शब्द है अगर आप इसे सुने, dan hoe prachtig is het geschreven en hoe mooi is het, इतना खूबसूरत तारीफ किया जा रहा है ये लड़का अपने प्रेमिका के लिए। तेरा चांद चेहरा बनाने की खातिर, दरार फिल्म का नाम मेरे प्यारे सिनेमा वालों, और ये 1993 का मूवी है।

चांद चेहरा बनाने की खातिर हजारों सितारों को तोड़ा गया है और गुलाबों गुलाबों को चोरा गया है। खूबसूरत गीत, प्यार का बयान, तारीफ कर रहे हैं एक दूजे को अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। खूबसूरत गीत इकबाल शहीन जी का लिखा हुआ आप सभी ने सुने हैं। अनु मलिक जिसका संगीतकार मेरे प्यारे सिनेमा डरार फिल्म से हमने नगमा निकाले हैं और ये फिल्म नीहत इंद्रिय नीहत का है 1993। सुचित कुमार फिल्म का जो प्रोड्यूसर है और अब्बास और मुस्तान बर्मावाला ने डायरेक्ट किया है। ऋषि कपूर, अरबाज खान, जूही चौला, जॉनी लेवर, सुषमा सेठ, दिनेश हिंगू, रसाक खान और कौन है तिक्कू तालसानिया, इन सभी का एक फिल्म मेरे प्यारे सुनने वालों। अनु मलिक जी का प्रोग्राम हम सजा रहे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों और मैं देखता हूं कुछ लोगों ने व्हाट्सएप किया है, अभी देखते हैं कि व्हाट्सएप किसने किया है। एनी दफाल सभी व्हाट्सएपर्स को दिल की गहराइयों से धन्यवाद हम कहते हैं। द्रिय नेहतक से वापस 2005 की ओर आपको ले चलेंगे मेरे प्यारे सिनेमा। फिल्म का नाम है वक्त और वक्त का एक रोमांटिक सॉन्ग समीर का लिखा हुआ निकाल रहा हूं और गीत मिलकर गाएंगे अलका याग्निक अब की बार विद उदित नारायण, ऑफ कोर्स अनु मलिक के साथ और संगीत पर की सुबह होगी और शाम भी होगी। दिन तो गुजरते जाएंगे जाएंगे और हम तुम्हारे प्यार में जीते और मरते जाएंगे।

सुबह होगी शाम होगी। उदित नारायण और अलका याग्निक के मेरे प्यारे सुनने वालों, इन दोनों की खूबसूरत आवाजों में समीर का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग मिलकर दोनों ने गाए हैं अन्नू मलिक के साथ और संगीत पर। वक्त फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनने वालों, वक्त 2005 का मूवी, विपुल शाह का प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया हुआ ये एक फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, बोमन ईरानी, राजपाल यादव और शेफाली छाया, अन्नू मलिक ने भी एक छोटा रोल इसमें अदा किया है। फिल्म वक्त मेरे प्यारे सिनेवालों। इस घंटे का आखिरी गीत की ओर आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सिनेवालों। इस गीत के बाद हम 7 बजे के ब्रेक की ओर बढ़ चलेंगे और तमाम सूचनाओं के बाद आप सभी के सेवा में फिर हम हाजिर रहेंगे लेकर प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर, जो आज तीसरी बार हम सजा रहे हैं, बना रहे हैं अन्नू मलिक जी का, और वो भी लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रोहतांग से। आखिरी गीत इस घंटे का फ्रॉम द मूवी फूल और अंगार। फूल और अंगार 1993 का फिल्म है, निखत इंद्रिय निखत, कुमार सानू और साधना सरगम का एक नगमा आप सुनने को जाएंगे अन्नू मलिक की साज और संगीत पर। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये गीत रानी मलिक जी ने लिखा है और एक फिल्म है सलीम अख्तर जी का प्रोड्यूस किया हुआ, अशोक गायकवाड़ ने डायरेक्ट किया है, मिथुन चक्रवर्ती और शांति प्रिया सोनम मुनेश बैल का एक फिल्म है। तो गीत आप सुनिए, मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

राह में उनसे मुलाकात हो गई और जिसे डरते थे वही बात हो गई। खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग और फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी ये नगमा इंदवर साहब जी का लिखा हुआ जो मिलकर गाए द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सान और अलका याग्निक। मेरे प्यारे सुनने वालों, अन्नू मलिक के साज और संगीत पर फिल्म का नाम विजय पाथ और या विजय पट 1994 का फिल्म है। 1994 फिल्म का जो डायरेक्टर है फारूक सादिकी, अजय देवगन, टब्बू, सुरेश उबराय, रीमा लागू, गुलशन ग्रोवर, डैनी दिनजोंगपा, विकास आनंद, इन सभी का फिल्म है। मेरे प्यारे सुनोलो, 10 मिनट बाकी हैं सरे 7 बजने में। ये है आप ही का मनचाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो और लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रोटरडाम से पेश कर रहा हूँ प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। आज तीसरी बार अन्नू मलिक जी का प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं और वो भी रात्रि में 9 बजे तक प्रोग्राम हम सजाएंगे। मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे, आपका यारों का यार, और फिर एक बार तहदिल से स्वागत करता हूँ आप सभी को, आप सभी प्रिय सुनने वालों को रतन का प्यार भरा नमस्कार पहुंचे और अदापर्स है। द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर और सिंगर अन्नू मलिक जी, इनके टॉप सॉन्ग्स फिल्म से निकाल निकाल कर हर एक हफ्ते हम प्लेलिस्ट को सजाता है और उस प्लेलिस्ट से ये खूबसूरत नगमाएं निकाल निकाल कर आप तक पेश कर रहा हूँ। बस यही उम्मीद और आशा के साथ प्रोग्राम बनाया जा रहा है और हमने सजाए हैं कि आप सुनते वक्त भी भरपूर एंजॉय करेंगे। बेटी जी खरूनिंग डंकी वेल आपके ऐप के लिए, मार्सब्रुक का मफराओ चित्रा जी और हेयर एंड्रू जी डंकी वेल आपके ऐप के लिए, मफराओ सुशीला चंद्रिका सिंह जी अहिताम सल्फेन डंकी वेल आपके ऐप के लिए, और मफराओ कमला जी अहित आम सल्फेन आपको भी हम धन्यवाद कहते हैं। मफराओ आइलिन जी अहित हार्लेम आपको भी हम धन्यवाद कहते हैं डंकी वेल आपके ऐप के लिए, और मफराओ इफोन दौलत जी अहित दन हाग डंकी वेल ओक फॉर ये ऐप इफोन। मेरे प्यारे सुनो लो, आप भी ऐप करना चाहोगे, बातें करना चाहोगे तो 02-3603-09-09 उजाला रेडियो का स्टूडियो का व्हाट्सएप है, और आपके कामकाज के लिए जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते तार के नंबर के लिए और ईमेल एड्रेस के लिए और बाकी जितनी भी जानकारी है चेक www.ujala.nl। हम आपको ले चलते हैं अगले गीत की ओर मेरे प्यारे सुनो वालों, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग में उस लिस्ट में ये गीत भी शामिल है जरूर से जरूर। समीर का एक नगमा है जो इन्होंने लिखा है, जो अन्नू मलिक के साज और संगीत पर मिलकर गाएंगे कुमार सानू और अलका याग्निक, 2004 का फिल्म फिदा से हम नगमा निकालते हैं कि आज कहो सनम जितना प्यार मैं उतना ही करूंगा। पेश है

आज कहूँ सनम जितना प्यार करूँ तुम्हें उतना। ये खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे से नौला समीर का लिखा हुआ अन्नू मल्लिक के साज और संगीत पर मिलकर गीत गाए हैं अपनी खूबसूरत आवाजों में द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू और अलका याग्निक। 2004 का फिल्म फिदा से हमने नगमा को निकाले, एक फिल्म जिसका डायरेक्टर केन घोष, फरदीन खान और जिस पर ये गीत पिक्चराइज किया गया है। फिल्म में शहीद कपूर और करीना कपूर जी ने भी काम किया है। मैं देखता हूँ किम शर्मा भी है और विजू खोटे और दिनेश हिंगू ये भी फिल्म में शामिल है। भैया सुनील एट अम्सटरडम डंकीवाल भैयो, आपके ऐप के लिए बेहद खुशी है हम कि आप ही चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर। और मफरा उषा जी एट दनहाख डंकीवाल उषा जी, आपके ऐप के लिए और आप ही एंजॉय करें क्योंकि अन्नू मलिक जी के नाम पर बहुत सारी खूबसूरत नगमाएं लिखा गया है। तो आप देख रहे हैं, निकाल रहा हूं प्लेलिस्ट से और मैं पेश कर रहा हूं एक एक खूबसूरत गीत आप सभी के खिदमत में। और इसी तरह से प्रोग्राम हम सजाएंगे बनाएंगे मेरे प्यारे सिनोल। आपकी जानकारी के लिए भी मैं ये बता दूं अभी से कि कल रात्रि को मोरखन डोंदडा 16 जुली यही स्टूडियो रतनाम से सजाएंगे बनाएंगे आप सभी के लिए 3 घंटे का प्रोग्राम दिल की आवाज, और वो भी 8 बजे रात्रि से प्रोग्राम हम सजाएंगे रात्रि में 11 बजे तक आराम करेंगे हम 8 बजे और समापित करेंगे 11 बजे 3 घंटे लगातार विद ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग्स एंड कुछ ब्रोकन हार्ट सॉन्ग्स भी हमेशा की तरह जैसे वो प्रोग्राम सजाया जाता है उसमें शामिल है। तो उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी भी भरपूर कल रात्रि को मेरा साथ देंगे। दिल की आवाज मोरखल लाइफ हियर ऑफ यू आर। वेल वेल वेल, मैं देखता हूं 9:04 के ओर हम आपको ले चलेंगे, मतलब ये कि 10 साल वापस, क्योंकि हम 2004 में थे फिदा लेकर। अब हम आपको ले चलेंगे 1994 फिल्म का नाम है खुद्दार। मेरे प्यारे सुनने वालों, खुद्दार से गीत निकालेंगे कुछ ऐसा, एक नगमा जो मिलकर लिखा है दैट इज मोई द ग्रेट इंदवर साहब जी, देवखोली जी और राहत इंदौरी, ये तीनों ने मिलकर गीत लिखा है और इन तीनों का लिखा हुआ ये पॉपुलर खूबसूरत नगमा मिलकर गाएंगे अन्नू मलिक के साज और संगीत पर। वंस अगेन कुमार सानू एंड वंस अगेन अलका याग्निक। खुद्दार फिल्म का नाम 9:04 मेरे प्यारे सुनने वालों।

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे जनालो खूबसूरत गीत, वो आंख है क्या तेरी सूरत नहीं जिसमें, या इस तरह इतनी खूबसूरत प्यार का बयान जो दोनों मिलकर गाए हैं, अलका याग्निक और कुमार सानू, एक मास्टरपीस, क्योंकि ये नगमा तीन लेजेंड्स के हाथों से लिखा गया है, द ग्रेट इंदवर साहब जी, देवखोली और राहत इंदौरी जी, ये तीनों ने मिलकर नगमाएं लिखे हैं ये फिल्म के लिए, और गाने लाजवाब बेमिसाल है सभी आज के लिए। ये नगमा हमने चुन करके निकाले हैं, आप तक हमने बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ पेश किए हैं। संगीतकार ऑफ कोर्स, उन्हीं का प्रोग्राम तो हम सजा रहे हैं तीन हफ्ते लगातार, और अगले हफ्ते भी सजाएंगे, अन्नू मलिक जी। फिल्म का नाम खुद्दार, और ये फिल्म 1994 का है, नहीं तीन फिर नहीं तक इकबाल दुरानी जी इनका डायरेक्ट किया हुआ मूवी, और जिसमें गोविंदा, करिश्मा कपूर, कादर खान, अंजना मुमताज, शक्ति कपूर, श्री राम लागू जी, रामी लेडी, और क्या नाम है, महेश आनंद जी ने काम किया है। मफराओ मीके जी, दंकवेल मफराओ मीके जी, आप कैब के लिए एंजॉय, यू आर एंजॉय बैक टू द फ्यूचर, और खास करके इतनी खूबसूरत जो बुधवार है, और अभी तक सूरज हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि आप भरपूर एंजॉय करें अपना, इतनी खूबसूरत चेहरा दिखा रहे हैं ये सूरज, और हमें एंजॉय करना पड़ेगा, क्योंकि ये वे नो इट कि कब ये मौसम बदल जाए, है ना। अगले मूवी की ओर आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनोल, तो वापस चलेंगे फन नहीं तीन फिर नहीं तक 11 साल ऊपर, और 2005 में जाकर पहुंचेंगे। फिल्म का नाम फरेब, और फरेब का एक दर्द भरा गीत हम निकालेंगे। साहित्य क्वादरी जी का लिखा हुआ एक नगमा है जो कुणाल गांजावाला और श्रेया घोषाल मिलकर गाएंगे, अनु मलिक की साज और संगीत पर, कि पहले से अब वो दिन है, पॉपुलर सॉन्ग ये भी है उन दिनों, और अभी तक लोग पसंद करते हैं। पेश करता हूं, भरपूर आप एंजॉय करें।

पहले से अब वो दिन है। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, कुणाल गांजावाला और श्रेया घोषाल जी की खूबसूरत आवाजें, सईद क्वादरी जी का लिखा हुआ ये डर भर गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं। अनु मलिक के साथ और संगीत पर 2005 का मूवी फिल्म फरीब से हमने नगमा को निकाले। और अभी कुछ देर में हम एक और गीत पेश करने वाले हैं कुणाल गांजावाला जी का, जो काफी पॉपुलर हुआ और अभी तक लोग पसंद करते हैं। फिल्म फरीब जो है 2005 का, ये फिल्म डायरेक्टर दीपक तिजोरी, ये कैन तुम वेल द एक्टर डायरेक्टर ये मूवी का दीपक तिजोरी, और ये फिल्म का जो स्टार कास्ट है मनोज बजपाई, शिल्पा शेट्टी और क्या नाम है शमिता शेट्टी जी, परमीत सेठी और कौन है या दिखे निकाला मान रिया सेन, हाँ जी ये भी मूवी में दरिस के निकली थी। घड़ी घड़ी घड़ी की तरफ मैं देखूं, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं 8 बजे के ब्रेक की ओर मेरे प्यारे सुनने वालों, और अभी कुछ ही सेकंड्स में 12 मिनट बाकी है वो भी 8 बजने में। अगले गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, उसके लिए हम आपको ले चलेंगे 2005 से फिर वापस 1995, तीन यार तुरख कोई होफरीक न बिनावे, 3 यार तुरख। फिल्म का नाम है अकेले हम अकेले तुम, द ग्रेट मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ ये भी दर्द भरे गीत में गिना जाता है नगमा जो हम पेश करने जा रहे हैं। और एक नगमा ऐसा है कि जो मिलकर गाएंगे अनु मलिक की साज और संगीत पर, क्योंकि अनु मलिक जी का प्रोग्राम हम सजा रहे हैं, कुमार सानू और अनु मलिक ये दोनों मिलकर गीत गाएंगे कि दिल मेरा चुराया क्यों जब ये दिल मेरा तोड़ना ही था।

दिल मेरा चुराया क्यों जब ये दिल तोड़ना ही था, और हमसे दिल लगाया क्यों? Why did you break my heart? Why did you fall in love? Why did you go away? मजरू सुल्तानपुरी जी, द ग्रेट मजरू जी का लिखा हुआ ये दर्द भरा नगमा। मिलकर गीत गाए हैं द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू और अन्नु मलिक जी, और अन्नु मलिक जी संगीतकार भी थे इस गीत का। 1995 का फिल्म अकेले हम अकेले तुम से हमने ये गीत को निकाले। मंजूर खान ने डायरेक्ट किया है, आमिर खान मनीषा कोयराला इन दोनों का एक फिल्म जिसमें देवन वर्मा भी है, तानवी आजमी और रोहनी हटनगड़ी पारी शरवल इन सभी का फिल्म। मेरे प्रिय सुनने वालों, जैसे मैंने कहा कुणाल गांजावाला का एक और नगमा आप तक हम पेश करने वाले हैं, और इस गीत के साथ इस घंटे को हम अलविदा कहेंगे। ब्रेक होंगे वो भी 8 बजे का, और 8 बजे के बाद सूचनाओं के बाद आप सभी की सेवा में फिर हम हाजिर रहेंगे लेकर बैक टू द फ्यूचर का आखिरी हिस्सा, क्योंकि आपको मालूम रहे हमेशा की तरह बुधवार को रात्रि में 9 बजे तक आपका साथ हम देंगे। आखिरी मूवी का नाम है मर्डर, और ये फिल्म 2004 का है, ट्वी डॉयसन तेम्फिर। एक रोमांटिक ऑल टाइम ग्रेट सॉन्ग साहिद क्वादरी जी का लिखा हुआ, कुणाल गांजावाला गाएंगे अन्नु मलिक की साज और संगीत पर। ये फिल्म जो है मेरे प्यारे सुनने वालों मर्डर, अनुराग बासु जी ने डायरेक्ट किया है, इमरान हशमी और मालिका शेरवात का एक फिल्म। मिलते हैं ब्रेक के उस पार, आप एंजॉय करें इस गीत को जो हम पेश करने जा रहे हैं।

जीने के हैं चार दिन और बाकी है बेकार दिन। आए जाए जवानी, लेकिन ये जवानी फिर लौट के ना आएंगी। सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजें, मेरे प्यारे सुनने वालों, समीर का लिखा हुआ गीत, ये दोनों ने मिलकर गाए हैं। अनु मलिक जिसका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं आज तीसरी बार, बैक टू द फ्यूचर का ये प्रोग्राम तीसरी बार अनु मलिक के नाम, और ये था फिल्म मुझसे शादी करोगी। फिल्म 2004 का है, ट्विटर संतन फीर, सज्जित नाडियावाला ने प्रोड्यूस किया है, डेविड धवन ने डायरेक्ट किया है, सलमान खान, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, जोनस अमृता अरोड़ा, अमरीश पुरी, सतीश शाह, राजपाल यादव, इन सभी का फिल्म है मेरे प्यारे सिनेवालो। ये उजाला रेडियो है और हम पेश कर रहे हैं प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। मैं हूं आपका यार रतन राम दुलारे पांडे। मेरे प्यारे सिनेवालो, हर एक बुधवार 6 से 9 बजे हियर ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन बैक टू द फ्यूचर। और घड़ी की तरफ मैं देख रहा हूं तो हो रहे हैं बैना पौने 8 का वक्त, नया बैना हो गया है, क्वार्टर ओवर 8। मेरे प्यारे सिनेवालो, रात्रि में 9 बजे तक आपका साथ हम देंगे। और जैसे मैंने कहा मेरे प्रिय सुनेवालो कि कल रात्रि को 16 जुलाई, हाँ जी 16 तारीख जुलाई, कल रात्रि को 8 बजे रात्रि से 11 बजे आपका सेवा करने चले आएंगे लेकर प्रोग्राम दिल की आवाज, और वो भी एकदम लाइव एंड डायरेक्ट क्यूआर के ये स्टूडियो रतनाम से विद ब्यूटीफुल। मैंने प्लेलिस्ट को देखा मेरे प्यारे सुनेवालो, मैंने कल प्लेलिस्ट को देखा है जो सजाया गया है कल के लिए, और मैं खुद अली मरमोली बहुत सारे खूबसूरत नगमाएं हैं, प्यार भरे सबसे ज्यादा है और कुछ दर्द भरे नगमाएं भी है, या खबल। तो अगर आप साथ देंगे कल तो आप भरपूर भी एंजॉय करेंगे। ओके मेरे प्यारे सुनोलो, 1994 के ओर हम आपको ले चलते हैं, क्यों अभी हम थे 2004 में। नखावा 3 यार वेर तरुख नीखंतिन फिर फिल्म का नाम मेरे प्यारे सिनेवालो इम्तिहान से गीत, पॉपुलर सॉन्ग मेरे प्यारे सिनेवालो, इतना पॉपुलर ये गीत फाइज अनवर जी के कलम से जो लिखा गया और जिसका आवाज कुमार सानू दे रहे हैं, म्यूजिक अनु मलिक ऑफ कोर्स। ये नगमा पेश करने जा रहा हूं बैक टू द फ्यूचर में, एंजॉय।

इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। खूबसूरत गीत, रोमांटिक सॉन्ग, पॉपुलर सॉन्ग, कुमार सानू की आवाज, फैज अनवर जी, इनकी कलम से लिखा हुआ गीत सानू जी ने गाकर सुनाए हैं, वो भी अनु मलिक के साथ और संगीत पर। मेरे प्यारे सिनेवालो, इम्तिहान फिल्म का नाम, 1994 का फिल्म जो है, 1994 एक फिल्म जिसका डायरेक्टर हरी बवेजा और सैफ अली खान, सनी देओल, रवीना टंडन, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, मोहन जोशी, आसरानी साहब जी, दलीप ताहिल जी का एक फिल्म। स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह जी भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, और जब भी स्वागरी हंस जी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, हंस लक्ष्मण सिंह जी अच सुतमेर, तो ऐप करते हैं, पावर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो ये स्वागरी को हम कहेंगे धन्यवाद, थैंक यू वेल एंड फाइंड अ चाइल्ड टाइट माय पावर वन डॉट हैपिक नोडक। एंजॉय स्वागरी। दिल चुराने वाले जान भी चुरा ले, अरे बाप रे दादा, खतरनाक गीत पेश करने जा रहा हूं मेरे प्यारे सिनेवालो, जिसका टाइटल है दिल चुराने वाले जान भी चुरा ले। देवखुली जी इनका लिखा हुआ गीत जो मिलकर गाएंगे कुमार सानू जी और अलका याग्निक, वो भी अनु मलिक के साथ और संगीत पर। एनव खान नतुलक वेरना बोव, 2005 का ये जो फिल्म है, बच के रहना रे पापा। कहां है गीत, यहां है गीत, पेश करता हूं। रिमेंबर दिस इज यूआर, हर एक इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए चेक www.ujala.nl। और 4 मिनट बाकी है सरे 8 बजने में। It is 4 minutes to 4, half 9, my dear friends and all.

जे जा आप चुरा ले कुमार सानू और अलका याग्निक, मेरे प्यारे सिन वालों, इन दोनों की खूबसूरत आवाजें देवखोली जी का लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं। अनु मलिक की साज और संगीत पर मेरे प्यारे सिन वालों बच के रहना रे बाबा फिल्म का नाम, और ये फिल्म 2005 का है। गोविंद मेनन जी ने डायरेक्ट किया है और करण खन्ना, मालिका शेरावत ऑफ शेरावत, ऐसे होना चाहिए ना, शेरावत। परी सरवल, रेखा जी, सतीश शाह और ना जाने कितने और लोग ये मूवी में काम किया है। खूबसूरत गीत आप तक हमने पेश किया है। अलमेर शहर में इस वक्त पौसे है और सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मूत ओक तैनसत वैरकला इस तरह तो टोनी इसरी जी अर्थ अलमेर डंकी वेल भैया आपके ऐप के लिए कमुआ जब करिए तो ओरजस धर के धीरे धीरे सुनिए एक कैती उजाला तो तू देखिए कितना स्नेह से तू कमुआ करिए खून दून नीतालीन पौज व नमेश हिलफिल तो टोनी इसा बातोरी तो What happy Clarstan? Oh, that happy Clarstan. खूबसूरत गीत है मेरे प्यारे सुनो वालों, अनवर सागर का लिखा हुआ एक खूबसूरत नगमा जो वंस अगेन द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू गाएंगे, अब की बार नाइटिंगेल आशा जी के साथ। अनु मलिक ऑफ कोर्स संगीतकार, उनका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं, बना रहे हैं आज तीसरी बार हियर ऑन यू आर बैक टू द फ्यूचर में, तो ऑफ कोर्स संगीतकार वो होंगे। कुमार सानू और आशा जी का ये नगमा निकाल रहा हूं 1994 का फिल्म मैं खिलाड़ी और टू अनाड़ी। ये नगमा लाखों हंसी मेरी नजर से गुजर गए या एक मतलब खूब जैसे नटूल है देश

ब्यूटीफुल सॉन्ग लाखों हसीन मेरे नजर से जो गुजर गए, बस आज पहली बार दिल में उठर गए। कुमार सानू और नाइटिंगेल आशा जी की आवाजें अनवर सागर का लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं। अन्नू मल्लिक जिसका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं इनकी साज और संगीत पर। 1994 नहीं दिन फिर नहीं तक का फिल्म मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं खिलाड़ी और तू अनाड़ी से हमने नगमा को निकाले। समीर मलकन का डायरेक्ट क्या हुआ ये फिल्म, जिसमें अक्षय कुमार, सैफ अली खान, शिल्पा शेट्टी, रगेश वड़ी, शक्ति कपूर, कादर खान, जॉनी लिवर, बीना जी, मुकेश खन्ना, रविनाथ टंडन, गोगा कपूर, इन सभी ने जो काम किया है। आपको ले चलते हैं इस गीत के बाद अगले गीत के ओर, छलान लगाएंगे और वो भी मेरे प्यारे से 9 साल का नीखियार नबुग्व 2003 में जाकर पहुंचेंगे। और ये एक रोमांटिक सॉन्ग है जो हमारे फेवरेट सॉन्ग के लिस्ट में भी शामिल है। ये गीत एक नगमा समीर का लिखा हुआ और जो मिलकर गाएंगे अनु मल्लिक की सांझ और संगीत पर उदित नारायण और अलका याग्निक की हूं जिया तुझको दिया। खुशी फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनो खुशी। ब्यूटीफुल सॉन्ग ये नगमा।

या ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये था वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, भूजिया मैंने जिया तुझको दिया, उदित नारायण और अलका याग्निक के ये खूबसूरत गीत। समीर का लिखा हुआ हमने आप तक पेश किया है। अन्नू मलिक संगीतकार मेरे प्यारे सुनने वालों, अन्नू मलिक जी इन्हीं का प्रोग्राम हम सजा रहे हैं, बना रहे हैं, और आपने देखिए कि कितनी खूबसूरत नगमाएं इनकी नाम पर लिखा गया है, कितनी खूबसूरत नगमाओं का ये म्यूजिक डायरेक्टर है। ये था फिल्म खुशी का एक नगमा, और खुशी जो है 2003 का मूवी है, 2003 बोनी कपूर का प्रोड्यूस किया हुआ मूवी, जिसका डायरेक्टर सूर्या, फरदीन खान, करीना कपूर, अमरीश पुरी, नविनीशल, बीना जी, जॉनी लेवर, शरद सक्सेना, और कौन है, और कौन है यार, दिखने का निकल मानी तो दिखने का मानी तो। मेरे प्यारे सुन लो, मैं देखता हूं घड़ी की तरफ, या दन खा एक ओवर नाद लास्ट नंबर, आखिरी गीत की ओर आज आपको ले जाएंगे। और आपको तो मालूम है, जैसे मैंने कहा मेरे प्यारे सुन लो, मोरखन आफंद कल 16 तारीख जुलाई, और वो भी बृहस्पतिवार का जो दिन है, दोंदड़ा है, हम आपका सेवा करने चले आएंगे, और वो भी रात्रि में 8 बजे से 11 बजे हियर ऑन यू आर उजाला रेडियो, आप ही का मनचाहत और फेवरेट स्टेशन, लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रोटरडम से, यही स्टूडियो से जहां से हम आजकल प्रोग्राम सजा रहे हैं, बना रहे हैं आप सभी के लिए, यही स्टूडियो से बनाएंगे दिल की आवाज कल रात्रि को। और हमने कहा कि बहुत सारे खूबसूरत नगमाएं हैं, मैंने कल प्लेलिस्ट को देखा है, और इतनी सारी खूबसूरत गाने हैं, लाजवाब बेमिसाल, हम बता नहीं सकते, आप भरपूर एंजॉय करेंगे, नए हैं पुराने भी है उसमें, और प्यार भरे बहुत ज्यादा है हमेशा की तरह, लेकिन दर्द भरे नगमाएं भी अवश्य उसमें शामिल है। मेरे प्यारे सुनोल, आखिरी गीत, दन खाव एव तरुख इन दाइट, एन खाव ना 1997, मेरे प्यारे सुनोलो 1997 का एक फिल्म, दिल कितना नादान है, दिल कितना नादान है से निकालेंगे एक नगमा, समीर का लिखा हुआ, और जो मिलकर गाएंगे अन्नू मलिक की साज और संगीत पर द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू और अलका याग्निक की, नजर की बात है, नजर की बात है, किसी को क्या पता। ये फिल्म मेरे प्यारे सुनने वालों, दिल कितना नादान है, महेश भज्जी का डायरेक्ट किया हुआ मूवी है, और राजा रगेश्वरी, किरण कुमार, अलोक नाथ और रीमा लागू का एक फिल्म है। इस गीत के बाद हम यहां से रुखसत होंगे, ब्रेक होंगे 9 बजे का। मेरे प्यारे सुनने वालों, उम्मीद और आशा करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आप सभी ने भरपूर एंजॉय की है, रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर कल मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार, और खुदा हाफिज, टेक केयर, और रिमेंबर आई लव यू ऑल।

उजाला रेडियो के जरिए हम प्रोग्राम में आपको ये नामा सुनाने बुझा रहे हैं मुक्का सिंह के आवास में, मुक्का सिंह ओक अंग्रेजक अब उजाला प्रासा मेला फेस्ट 29 en 30 augustus in GIA Event Center Den Haag mee. Noteer het in je agenda. Brasa Mela Fest. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. To Bemisa. Mukasing met Express Zalo.